थैंक यू। आदिति देवो भव। ऑनरिंग आवर एल्डर्स इज आवर ट्रेडिशन। मैं नो रिक्वेस्ट आवर सेक्रेटरी मैडम फैसिलिटेट और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी विद अंगवस्त्रम एंड अ मेमेंटो।

0: goal is reached and when which insists on to work tirelessly towards the upliftment of our society, importance on education, character building and selfless service. This philosophy of Swami Vivekananda is a blend of ancient spiritual wisdom and modern scientific thought, inspiring generation to strive for excellence. I once again, I do not find words to say my thank you in few words, but very with my heart moving gratitude, I once again welcome our Prime Minister. Thank you so much. Swagatam, suswagatam, Jai Hind.
1: एक बीच से विराट वृक्ष बनी कहानी अ शॉर्ट फिल्म ऑन द जर्नी ऑफ हिंदू विद्यालय ऑन एलईडी
2: नमस्ते वेलकम टू जयगोपाल गरुड़िया हिंदू विद्यालय
3: विश्व हिंदू विद्या केंद्र अपनी स्थापना के 50 वर्ष मना रहा है 1975 में स्वामी जयेंद्र सरस्वती की प्रेरणा से इसकी स्थापना हुई उद्देश्य भारतीय मूल्यों और धरोहरों के प्रति सम्मान और स्नेह की अटूट परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाना आज तमिलनाडु में इसकी 15 ब्रांच चेन्नई नागरकोइल कन्याकुमारी रामेश्वरम और शिवकुंडम में संचालित हैं, जो आधुनिक शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा दे रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का तमिल भाषा और तमिल संस्कृति के प्रति विशेष आग्रह रहा है वे तमिल संस्कृति को विश्व की अमूल्य धरोहर मानते हैं जिसे उन्होंने अपने जनप्रिय कार्यक्रम मन की बात से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमेशा व्यक्त किया है
4: हमें गर्व है कि दुनिया की सबसे पुरातन भाषा हमारी तमिल भाषा है
3: राष्ट्र के प्रति दायित्व समाज के प्रति कर्तव्य और मानवता के प्रति समर्पण इन्हीं मूल्यों को विकसित करता है विश्व हिंदू विद्या केंद्र राष्ट्र निर्माण की दिशा में विश्व हिंदू विद्या केंद्र बच्चों तक किफायती आधुनिक शिक्षा का प्रकाश पहुंचाता है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी सभी तक शिक्षा पहुंचाने का संकल्प समाहित है इसलिए मातृभाषा में उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम उपलब्ध हो इसे सुनिश्चित किया गया है
4: द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस टू प्रमोटिंग इंडियन लैंग्वेजेस हमने तमिल जैसी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए मातृभाषा में हायर एजुकेशन का विकल्प भी युवाओं को दिया है
3: नए संकल्पों नए लक्ष्यों के साथ जब देश तेज गति से विकास कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी के संकल्पों से प्रेरणा लेकर विश्व हिंदू विद्या केंद्र शिक्षित कुशल और दक्ष युवाओं को भविष्य के कर्णधार के रूप में तैयार कर रहा है देश सेवा और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ विश्व हिंदू विद्या केंद्र की ये यात्रा अनवरत जारी है
1: The three iconic moments which are going to take place in the annals of Hindu Vidyalaya is going to happen right now. With humble pranams, I request our Honorable Prime Minister Ji to unveil the virtual AI lab, ATL lab and the patriotic song Pendrive release. Ji, please.